0: सब कुने वे आपको पर कुने वे ना को तार तारा जू तो लिए निवे सो गौरा होए अपराधी दूणा ने वे जो हंता मृगा शीश ने वाया क्या थी है जारे देख सुध जाए महला पहला
1: पढ़ पुस्तक संध्या बादंग सिल पूज स्वगल समाधंग मुख झूठ विभूखण सारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग गल माला तिलक लाटंग दो तोती वस्त्र कपाटंग जे जानस ब्रह्मंग करमंग साफो कट निश्चय करमंग कहो नानक निहचो त्यावे बिन सतगुरु वाट ना पावे पौड़ी।

मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूर, अखी सूतक वेखना पर त्रै पर तन रूप, कनी सूत

रंग हसे रंग रोव है चुप भी कर जाहे, परवाह नाही किसे केरी बाज सचे ना।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहो निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गौर प्रसाद चक्र चे

हई किस आगे कहिए जाई, सो सच्चा सच सलाहिए जे सतगुर दे बुझाई। जिनी सचड़ा सच सलाहिया हौ तिन लागौ पाई।

0: सब कुछ तेरे है, बस तेरा घर बनाए तेरे करन दुबदाई तुद कर माण महता तेज अपना आप कर सर्व कला भरपूर दे सरत करता नानक दास दास तुदया गए बिन मता।
1: श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात द्वेदाई दाया चंगियाँ बुरियाँ वाचे धर्म धूर

रंग परंग अनेक न जापन करते बा जिया अंदर जियो सब की जान ला सब कुछ तेरा वस तेरा कर पला।

हे संसार ताप गदने कदना में सब दुख हदो, हे शरण जोग दयाले, हे शरण जोग दयाले, दीनानाथ माया करो, शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरत नानक राम दमोदर माधव है।

गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केते छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

सारण परे की राखहु शर्मा, एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह, पातशाही दसवें कवियो बाच बेनती चाओ पाई, हमरी करो हाथ द रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मान रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा, हमरे दुष्ट सवै तुम कावहु, आप हाथ द मोहे बचावहु, सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख्यो सवै करतारा, मोर अच्छा निज कार दै करिया, सब बैरन का वाज संगरिया, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ते आऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख्यो हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ द मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जू करियहु रक्षा, राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जच्छन उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियहो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी, सेवकन को सेवगुण सुख दियो, सत्रन को पल मोबद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पार कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछानै, काट काट के पट पट की जानै, जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब आकर्ख करत हो कबहू, तुम मैं मिलत देह तर सबहू, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंब, ताका मूड उचारत पिदा, जाको पेव न पावत बिदा, ताकौ कर पाहन अनुमानत, महामूड
कछु भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तोहे तेती। तुमरा लखा ना जाए पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेत जकीनी, उतपुज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट भयो संकर इकैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आद जुगादे स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख्य उबार असिख्य संगरो। दोष्ट जेते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तोज तब सरनी परे, तिनके दोष्ट दुखित हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट छाह छुआ सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फासते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोखते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी। सर्ब ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो।

सर्व ठौर मोह सहाय, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद, कहें हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहियो।

राम कले महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया बाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया शब्दो ता गावहो हरि केरा मन जिने वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओहो करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा घर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटा हो जिस दिया एह वडे आईया कह नानक सुनो हो संत हो शब्द तर हो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ

पाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी। संत साजन भए सरसे पूरे गुर ते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर।

सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावे जे को पुंचा तिसका होए उदारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो सलोक

हे निमाने आंदे मान, नेताने आंदे तान, ने ओटे आंदी ओट, तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जी ओ, आप जी दे पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे, तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज, आप जी दे हाजूर।

गुर सिख हो गुर सिख है पीर पीर हो कोई शब्द सुरत चेला गुरु परमेसर सोई दर्शन दिष्ट ध्यान धार गुरमूरत होई शब्द सुरत कार कीर्तन सतसंग विलोई वाहिगुरू गुरमंत्र है जप हौ मैं खोई आप गवाए आप है गुण गुणी परोई फुरमान तेरा सिरे ऊपर फिर ना करत विचार तू ही दरिया तू ही करिया तुझे ते निस्तार बंदे बंदगी एक तियार साहेब रोस तरो के प्यार नाम तेरा आधार मेरा ज्यो फूल जाई है नार कह कबीर गुलाम कर का जी आए पावै मार हौ आया दूर हो चल कै मैं तकी तौ शरणाए जियो मैं आसा रखी चित मै मेरा सबो दुख गवाए जियो तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सोहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रखहो शरणाई अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपना तन मन होए निहाल जागुर देखा सामने सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवा सिफत खसम दी नूरे अरसह कुरसह तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते सा हो सिर साहदसा जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसा हो सज्जन सच्चा पाते सा हो सिर साहदसा जिस पास बैठिया सोही है
सबना दा वेसा हो। सत नाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, सोरठ एक ओंकार सतगुर प्रसाद बहु

आया खिले सगल जगत, चंगे आइया बुरे आइया वाचे धर्म हदूर, करमी आपो अपने के नेड़े के दूर। जिनी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले कीती छुटी नाल। जिनी नाम ते आया गए मसकत।

राखन कौ सम्रत। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा शंत घर चौथा।

दुख दरिद्र तिनके गए, सत गुरु चरण जिन परसिया, से पास प्रेत सुर नर भए।

भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा कर सो पूरा परधान जिसनो बल तर जिस है जराए आप सोई अजर जर तिस ही मिलया सच